0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इन टू ड्राई फ्रूट एंड

संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत हिंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाद।

सुखी एक एक की पीर पहचान है घट घट के पट पट की जान है जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते

कहूं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सर।

गमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो

0: और यासर टुडे इन हिस्ट्री क्या कहते हैं कहते हैं आज के दिन 1962 में क्या हुआ था समय केनिया को सबसे पहला अफ्रीकी मेयर मिला नैरोबी को मेयर ऑफ नैरोबी आज के दिन इनको मुकरर किया था फर्स्ट अफ्रीकन मेयर ऑफ द केनियन कैपिटल द अपॉइंटमेंट वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसमेंटलिंग कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स समय जो साम्राज्य का बनाया हुआ निजाम था वो टूट रहा था और हमें मिल गए पहले नैरोबी के मेयर 1962 में चार्ल्स रूबिया जी हाँ चार्ल्स रूबिया और आपने कहा राजकुमार 1926 में पैदा हुए 96 में चल बसे आज के दिन वन ऑफ हिंदी सिनेमाज मोस्ट टावरिंग पर्सनैलिटीज वो जुलाई 3 को चल बसे ही वॉज रिनाउंड फॉर हिज डीप बैरिटोन वॉइस समझ उनकी आवाज़ थी क्या कमाल की आवाज़ थी और अनमैच्ड डायलॉग डिलीवरी कमाल के अदाकार थे बहुत ज़बरदस्त इनकी अदाकारी लेजेंडरी रोल्स आपने कहा है मदर इंडिया वक्त और पकीज़ा लेकिन आपने हीर रांझा की बात नहीं की क्या हीर रांझा में वो थे वो समझ उस के बग़ैर तो मुझे नहीं पता कि हम राजकुमार का जिक्र भी कर सकते हैं कि नहीं जुमा मुबारक सैलीडार फ्रॉम लंदन थैंक यू ब्रेक लेते हैं फिर मेहमान का भी इंतज़ार होगा समय अगले घंटे में मेहमान हैं जिनका नाम है वो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं इनका नाम डॉक्टर वेंकटेश नरसिम्हा है
1: Bangla Bollywood hits and ballads to sing along with.
2: East FM.
1: Kenya's premier
2: Asian mix.
3: East FM. Kenya's premier Asian mix.
4: A few weeks ago, we sold 100 tickets for 100 bob. Told people nothing. They trusted us anyway. Turns out, they were right too. On Saturday, July 25th, experience the Agave Affair. Curated tasting, great music, and great company. All happening at KICC. One night, bold flavors, unforgettable memories. Don't watch it on everyone's stories. Be in it. Alibad tickets are now live at ticketyetu.com. The Agave Affair.
5: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

क्या बात है तेरी ओसम में बात है दो लिसनर्स की पहले तो रसिला शाह कहते हैं कि देखें जब कोई वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कोई सियासी नेता निकलता है सड़क पर तो समय सड़क को साफ कर दिया जाता है कोई ट्रैफिक नहीं होना चाहिए तमाम गाड़ियां हटा दी जाती हैं इसी तरह से वो कहती हैं रसिला शाह के 27 साल रेशु गुप्ता जो छोटा सा स्टॉल चलाती हैं सड़क के किनारे अपना स्टॉल अपने स्टॉल पर बैठी थी कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका काफला गुजरना था वहां से तो पुलिस ने तमाम जो रुकावटें थी उनके रास्ते की हटाई तो ये जो थी रेशु गुप्ता उनके स्टॉल पर आए और पुलिस वाले ने उसका स्टीमर जो था पानी उबल रहा था वो बेचती है कुछ चीज़ें खाने की पानी उबलता हुआ उस पर पड़ा और वो बेचारी अस्पताल पहुंच गई उसके चेस्ट उसके बाजुओं उसके टांगों पर गरम खौलता पानी गिरा समझ कुछ नहीं होगा इसका कहेंगे कि तू रास्ते में थी और पुलिस वाला ठीक है लेकिन आपने कहा है रसिला हार्ट ब्रेकिंग वर्ड्स है मूव थाउजेंड्स शी सेड शी वर्क्स टायरलेसली टू सपोर्ट हर फैमिली कोई नहीं सुनेगा ये कहानी है दर्शन सिंह लोटे शमी कपूर को बहुत अच्छा लगा जो आपने शायद यंग एज आई लाइक शमी कपूर बिल्कुल सभी के वो फेवरेट थे शमी कपूर दर्शन सिंह लोटे बहुत शुक्रिया हरीश वरसानी क्या कहते हैं कहते मैं तेरे जिक्र में भी नहीं मैं तेरे जिक्र में भी यानी जो मेंशन आप करते जो बात करते हैं उसमें मैं नहीं मैं तेरे जिक्र में भी नहीं और तू मेरे लफ्स लफ्स में है कहते तू मेरी बात ही नहीं करती लेकिन मेरे एक एक लफ्स में तू मौजूद है बहुत अच्छे हरीश वरसानी बहुत अच्छी चॉइस

0: हमेशा ये ऐसा लगता है कि जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मोहम्मद रफी साहब को कोल्ड हुआ हुआ था, लेकिन वो इतने नेक इंसान थे, कोल्ड क्या कुछ भी हो जाता, वो अपनी जो वक्त पर आया करते थे रिकॉर्डिंग के लिए। समय फसीया कुरैशी हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने एक शेर आपके लिए भेजा था जो थोड़ी देर के बाद मैं आपसे पूछती हूँ, एक लफ्ज़ वहाँ से कर दूँगी, गुप्त कर दूँगी। लेकिन ये बताना था कि अगर आप जापान जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहते हैं कि 1978 के बाद पहली बार, आफ्टर 1978, पहली बार जापान ने अपने वीज़े की फीस में कितनी बढ़ोतरी की है, 400%। कहते हैं कि बहुत बढ़ा दिया वीज़े की फी, जहां 3,000 येन देते थे ना वहां 15,000 येन आप देंगे। अब फैसला आप पर है कि आपने फिर वहां जाना है नहीं जाना, वो आप खुद देख लें।
1: Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM. Asian Mix.
2: It's 11:19.
1: Back to Kenya's premier Asian Mix. East FM. East FM.

तो मैंने कहा कि जापान ने पहली जुलाई से समय अपने वीजे चार गुना ज्यादा महंगे कर दिए. तो कृष्ण ने कहा है कि बहुत खूबसूरत देश है, हमारे बच्चे वहां होकर आए, जापान देखने लायक है, सब कुछ बहुत ठीक ठाक है, लेकिन कोई वहां पर समय इंग्लिश नहीं बोलता. आप वहां जाकर बिल्कुल हो जाते हैं हेल्पलेस, क्योंकि कोई अंग्रेज़ी ही नहीं बोलता, हर चीज़ जो जापानीज़ में लिखी हुई है. और खाने के बारे में भी ये है कि बहुत मुख्तलिफ खाना है जो वहाँ से आए हैं. खैर, अब कहा है यासर ने कि प्लीज़ अगर आप चेहरे पर इतने गाने सुना रहे हैं तो वो क्यों नहीं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा. आपको पता है ये फ़िल्म परसमनी ब्लॉकबस्टर थी, 1963 की फिल्म है परसमनी, और लता कमल बारोत ने गाया है ये गाना, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था. वाह, करती हूँ आपके लिए वो फरमाइश भी आपकी पूरी. लेकिन दर्शन सिंह लोटे ने गाया, आपको पता है शमी कपूर की बर्थडे है आज. अच्छा, और एंजॉय कर रहे हैं आप म्यूज़िक, ठीक है. और यहाँ पर कौन है, कल्पना, कल्पना ने क्या कहा है, और कल्पना ये आपको लिख कर ही भेज दें, क्योंकि बहुत ही कहते नेवर रिटर्न फॉर अ टेबल वेयर योर एब्सेंस ब्रॉट पीस एंड योर प्रेजेंस ब्रॉट क्या, ये समझ, ये जो रंगीन होते हैं ना फॉरवर्ड्स, वो प्लीज़ उनके उनकी जगह मुझे लिख ही दिया करें. आप लिख दें हर एक का लिखा हुआ, आई रीड, पर ये कभी कभी फॉरवर्ड्स आर इम्पॉसिबल. व्हाट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आर यू प्लेइंग, OMG, ओ माई गॉड, आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, सैली डार, आई एम सो हैप्पी यू आर एंजॉइंग. अब देखें समिन, वो जो फरमाइश है वो भी पूरी करनी है, लेकिन दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाली थी, मंक्स के साथ क्या हुआ, सर बड़ा अफसोसनाक वाक्या थाईलैंड में हुआ मंक्स के साथ. वो पहले फरमाइश फिर मंक्स.

0: और मिसेस पटेल का कॉल की कॉल भी आई हुई है समझ, मिसेस पटेल चाहती हैं एक गाना, आ नीले गगन तले। ओके ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं कह रही थी कि किसी और ने भी OMG कहा है, OMG हैप्पी टू लर्न दैट टुडे इज शमी कपूर्स बर्थडे। ओ माय गॉड, अच्छा कहते हैं हैप्पी हेवनली बर्थडे टू वन ऑफ आवर फेवरेट एक्टर्स सलमा, वाकई बहुत ही अच्छा, आपकी ग्रीटिंग अच्छी है, दिल से है कि वो यहाँ दुनिया में नहीं रहे फिर भी उनको आपने विश किया है, खुदा जन्नत दे उनको।
1: परवीन, मैं फरखंदा शेख बोल रही हूँ। परवीन, आज मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की बर्थडे है, नेक्स्ट वीक मिकाइल की है, लेकिन हमने दोनों की इकट्ठी की आज, मैविश शो मिकाइल की। इतने प्यारे बच्चे हैं, मुझे मेरे जान से प्यारे, हम उनको इतना प्यार देते हैं। तो परवीन, आप कभी ये गाना लगा सकते हो, खुदा कभी ना करे गम से गम जुदा तुम्हें, तो प्लीज आप उनको जरूर विश कर दे, मैविश शो मिकाइल को। अल्लाह हाफिज।
0: आप बच्चों को लंबी उम्र दे, आपको खुश रखे, उनको भी खुशियां दे, आप बहुत अच्छी ग्रैनी हैं, खुदा कभी ना करे हम से हम कनार। ओके, वो मैं उनके लिए सुनाती हूँ, और आ नीले गगन के तले वो मिसेस पटेल के लिए है। और यहाँ कौन है, ये हैं कल्पना, आई थिंक यस, कल्पना ने क्या लिखा है, कहती है आई गॉट दिस फॉरवर्ड टुडे, कहते हैं कि दिस हिंट्स एट ट्रबल मेकर्स, बट द क्वेश्चन इज विल ट्रबल मेकर्स एवर एक्सेप्ट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ट्रबल और रकस। कहते हैं जब ये लोग फितने करते हैं, बदमनी फैलाते हैं, वो कभी मानते नहीं कि उन्होंने किया है ऐसा, फसाद करवाते हैं। नेवर रिटर्न टू अ टेबल वे योर एब्सेंस ब्रॉट पीस एंड योर प्रेजेंस ब्रॉट डिस्कम्फर्ट। कहते हैं उस मेज पर कभी ना जाओ जहाँ आप आते हैं तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आप जाते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, उस मेज़ पर ना जाएं। और कहते हैं कि दैट सीट वॉज नेवर योर्स, बहुत खूब, कहते हैं ये मुझे फॉरवर्ड मिला था। ओके कल्पना, बट द क्वेश्चन इज विल ट्रबल मेकर्स एवर एक्सेप्ट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ट्रबल। कभी नहीं, कभी नहीं, आप नहीं भागना है उनसे, आप भागते रहिएगा जितनी जितनी फास्ट आप भाग सकते हैं, एज फास्ट एज योर लेग्स कैन कैरी, उनसे दूर हो जाइएगा। अच्छा सलीम, परवीन जी, दिस इज शो यू माई इन्विटेशन फॉर लेडीज फाइनल एट द क्रिकेट मैच दिस संडे एट लॉर्ड्स। कहते हैं लॉर्ड्स में ना औरतों का फाइनल क्रिकेट मैच हो रहा है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ओल्डेस्ट एनिमीज हैं, अगर किसी ने आना है तो मैं उनको एक मौका दूंगा, अगर किसी ने, वो लंदन में है लॉर्ड्स, आप तो जानते हैं मशहूर, तो अगर है तो फिर मैं सलीम मेहर का नंबर आपको दे दूंगी। और जबीन हैरानी, जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, जी ठीक है। और सर मैं मंक्स की आपको खबर देने वाली थी कि 11 साल का बच्चा पिकअप चला रहा है, अब देखें कि आपके घर से कोई चाबियां लेकर गाड़ी ले उड़े 11 साल का बच्चा, ये आप कहाँ हैं। खैर थाईलैंड के मंक्स सड़क पर जुलूस की सूरत में, वो काफ़ी चलते हैं मंक्स, कभी कभी पीस वॉक के लिए चलते हैं और इसी तरह निकल पड़ते हैं जुलूस में पैदल। लड़का तेज़ रफ्तार गाड़ी, 11 साल का बच्चा है, उसने 35 मंक्स पे गाड़ी चला दी, 8 का निधन हो गया, समिन 4 वहीं और 4 अस्पताल में, 14 बेचारे मंक्स जख्मी हो गए। अब ये किसका कसूर है, क्या वालदैन को मिलेगी सजा, क्या होगा,

0: तो समझिए क्या छोटा सा लफ्ज है जो कि यासर को मिल गया, मुझे पता था ये ढूंढ लेंगे क्योंकि इनके पास वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए वो हर सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। ओके ठीक है, कमाल है, फर्स्ट कॉलर टू गिव मी द राइट आंसर और वो है यासर। अब साथ आई हैं आशा भिमानी, करेक्ट, वेल डन। दूसरे जो आए हैं, आई लव दिस सॉन्ग, खुदा गवाह, ओके ठीक है। अब इनके बाद, अच्छा मतलब है कि किसी को मिला नहीं आंसर। मैं आपको आगे चलकर, पहले आप कोशिश करें कि अब ना कोई शिकवा ना कोई गिला ना कोई मलाल है, सितम तेरे भी बेहिसाब रहे और डैश मेरा भी कमाल रहा। तूने सितम किए मैंने क्या किया, छोटा सा लफ्ज़ है, मैं आपको उसका इंग्लिश में बताऊंगी पर पहले ट्राई।
1: Your favorites from the

0: और जो था समझ शेर यूं था, अब ना कोई शिकवा ना कोई गिला ना कोई मलाल रहा, सितम तेरे भी बेहिसाब रहे, सब्र मेरा भी कमाल रहा। सब्र पेशेंस मैं आपको देने वाली थी, लव्स पेशेंस का। और सोनल मोदा, आपने कहा है कि धीरज धैर्य, जो कहा था मंजुला विश्वकर्मा ने, वो धैर्य मतलब सब्र ही हुआ, एज फार एज आई नो सब्र ही होगा।
1: नीले गगन के तले, ये गाना फिल्म बादशाह का है, 1954 की मूवी है, जिसको हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है, और जिसको हसब जयपुरी ने लिखा है, और जिसकी धुन शंकर जयकिशन ने बनाई है।
0: थैंक यू सो मच प्यारली भाटिया। अब देखते हैं मंजुला विश्वकर्मा शायद धैर्य के बारे में कुछ कहें।
2: जी, धैर्य को सब्र भी बोलते हैं। सितम तेरे भी बेहिसाब रहे, सब्र मेरा भी कमाल रहा।
0: बिल्कुल मंजुला विश्वकर्मा। अब देखने आपने अपना बनाया समझ, ये वो गाने आज मैं सुना रही हूं, बरसों मैंने नहीं आपको सुनाए।

0: सर्वे कहते हैं कि गुरुदत्त का कमाल स्पेक्टेक्युलर फिल्म प्यासा देखने लायक है. कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि इंडस्ट्री को चार चांद लगा दिए, गुरुदत्त मैं कह सकता हूँ छः चांद लगा दिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री. जिस तरह से समय लाइट और डार्क का उन्हें इस्तेमाल किया था, इन्होंने वेस्ट से सीखा था और ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया द यूज ऑफ डार्क. वो डार्क सीक्वेंसेस इस्तेमाल करते थे फिल्म में.
1: हेलो प्रेम जी, गुड मॉर्निंग, मिस अंजल हियर, जुम्मा मुबारक, हैव ए नाइस वीकेंड. आओ प्रवीण जी, अपनी कुछ लाइने आज मैंने पंजाबी की देखी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है. ए इंसान, कभी दुनिया में आया है तो पहचान ऐसी बनाकर छोड़ कि मौत भी आने से पहले पूछे मे आई कम इन. इस मतलब से दुनिया मत जियो कि आपको लाखों लोगों से आपको कंप्लीट करना है. खुद से एक ही लाइन कहिए, भाड़ में जाए लाखों लोग, मुझे इस जिंदगी में टेस्ट में पास होने के लिए कोई रोक नहीं सकता. मंजिलें भी जिदी हैं, रास्ते भी जिदी हैं, देखते हैं कल क्या होगा क्योंकि मेरे हौसले भी जिदी हैं. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे.
0: बहुत खूब मिसेस धंजल. और यहाँ पर है, मोस्ट पीपल नो हिम एज गुरुदत्त, हाउ मैनी नो हिज सरनेम. वॉट आई मीन इज हिज सेकेंड नेम. कल्पना ने पूछा है कि गुरुदत्त का नाम क्या था. मुझे भी याद है, मैंने पढ़ा तो हुआ है. और आज तो सभी गाने एक से बढ़कर एक. बिंदु जयपुर से जी, अनयूजुअल थे और अनहर्ड. ओके, और यहाँ पर
2: सलाम, इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में 40 रन से हराया और फाइनल में एंट्री किया. अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों फाइनल खेलेंगे संडे को 5 तारीख को, और आज श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट का मुकाबला है.
0: संडे को आप देख सकते हैं, दिनेश भट्ट ने कहा है मुकाबला इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया. बहुत खूब. अब क्या है आगे, क्या है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है.

और मिसेस पटेल कहती हैं कि पता क्या एक और गाना उनकी फिल्म का जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला ब्यूटीफुल सॉन्ग है अगर वक्त कभी हुआ तो जरूर वो मैं मेरी लिस्ट में होता है कृष्ण सरोवर ने कहा है कि आप जानते हैं प्यासा तो थी ब्लॉकबस्टर लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी कागज के फूल क्या बढ़िया फिल्म थी क्या उन्होंने मेहनत की थी इस फिल्म में लेकिन कहते हो फिल्म फेल हो गई इतना बड़ा नुकसान गुरुदत्त को मिला कि उसकी वफात हो गई कहते हैं उनकी मौत ही इसी वजह से हुई थी इतना बड़ा झटका वो सह नहीं पाए कृष्ण थैंक यू बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप हमें देते हैं अमीर अली राणा ग्रेट आपने कहा कि गुरुदत्त का नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण तोबा अच्छा है गुरुदत्त बना दिया ये बहुत लंबा था कौन याद रखता दीपक वडगामा वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण फुल नेम दीपक वडगाम थैंक यू नीला शेत वसंत कुमार उसारा नीला शेत ने भी वही दिया है उनके पूरे उनका पूरा नाम

0: और सना कहती हैं अब तो बाहर आएगी सोमवार को, डेडिकेटेड टू मी. थैंक यू सना. और अब चलते हैं, मंजुला गोरसिया कहती है मेरा सवाल कहाँ गया. समझ, इतनी बातें थी, मुझे वो सवाल जो है ना पीछे रखना पड़ा, पर अब पूछती हूँ हु इज 74 टुडे. आज कौन है, गायक हैं, उनके पिता भी गायक थे, गाने वाले सिंगर थे, बट ये जो हैं बेटे जिंदा हैं, बाप नहीं हैं. 74 टुडे, उन्होंने एक फिल्म में काम किया था बाल कलाकार के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट, और उस फिल्म का गाना सामने आगे आ रहा है, मैंने रखा है. उन्होंने कहा है कि वो दूर गगन की छाँव में चाइल्ड आर्टिस्ट थे. हु इज 74 टुडे, वो कौन है, उनका नाम दीजिएगा.
1: All the great songs that make your day.

0: मंजुला गोरसिया ने कहा है कि इन पर फिल्माया गया था जो आज का आंसर है. आंसर देने में कृष्ण सर्वे आपने करेक्ट. मंजुला गोरसिया ने यह भी कहा है कि आपको पता है राजकुमार की आपने इतनी बातें की लेकिन आज उनको आज उनकी बरसी है. 30 साल हो गए हैं उनको गए दुनिया से. क्या बात है मंजुला गोरसिया, किसी ने मेंशन ही नहीं किया. एम एल विश्वकर्मा आपने सही जवाब दिया था, उनका नाम बीना पटेल नाम आपने सही दिया था. और यहाँ पर हैं कल्पना करेक्ट आंसर, टीना करेक्ट आंसर जो अभी अभी गायक का पूछा है, अमीर अली राणा बिल्कुल सही, रसीला ठीक है, सना काना बिल्कुल सही, आशा भीमानी हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट लिसनर्स हैं, आशा भीमानी भी हैं.
1: आज तो गाने एक से बढ़कर एक हैं. आपको तो पता नहीं ईस्ट एफएम से तो मेडल मिलना चाहिए और हम सब लिसनर एक दिन सुनकर तो आपको बड़ा मेडल देंगे. पता नहीं वो दिन कब आएगा लेकिन जरूर आएगा. अल्लाह हाफिज.
0: सोने का होगा, चांदी का या तांबे का होगा मुझे नहीं पता लेकिन होगा मेडल. थैंक यू, थैंक यू. सुनने वालों का मेडल है परखंदा शेख. और नाजनीन बिल्कुल करेक्ट आंसर. एंड टू यू टू हैव अ ग्रेट वीकेंड. आज कौन 74 के हैं, जबीन हिरानी करेक्ट आंसर. और
2: हेलो सलाम परवीन जी. परवीन जी किसी ने बड़ा खूब कहा है शीशे पे पारा चढ़ा दो तो वो आईना बन जाता है. पारा मर्क्यूरी. शीशे पे पारा चढ़ा दो तो वो आईना बन जाता है और वही आईना किसी को दिखा दो तो उसका पारा चढ़ जाता है. शुक्रिया. चलते चलते परवीन जी कहते हैं रोज बांटो तो रोज बढ़ेगी, रोज बांटो तो रोज बढ़ेगी, एक मुस्कुराहट दूसरी दुआ. बस यही दुआ है आप सब खुश रहें. इन्हीं दुआओं के साथ परवीन जी आपसे इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद. चलते चलते परवीन जी कुछ याद आ गया. पत्नी ने कहा सुनिए जी अगर मैं कहीं खो जाऊं तो आप क्या करेंगे. पत्नी ने कहा सुनिए जी अगर मैं कहीं खो जाऊं तो आप क्या करेंगे. पति ने कहा मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा. पत्नी खुश हो गई और उन्होंने कहा कैसा इश्तिहार देंगे. पति ने कहा अपना वक्त जाया ना करें, जो खोया है वो मुझे मिल गया है, कृपा ढूंढना बंद कर लें. लेकिन हम ढूंढते हुए आपको सोम के दिन फिर मिलेंगे, धन्यवाद. अपना ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.
0: मुझे लगा कि वो शोहर कहेगा जिसे मिले वो रख ले, ऐसा भी कोई जोक था जिसे मिले वो रख ले. बीना पटेल बिल्कुल करेक्ट आंसर. अभी अभी मैं आंसर भी दे देती हूँ आपको. सोनल मोदा एंजॉयिंग द प्लेलिस्ट और आज वो हैं करेक्ट आंसर. सोनल रसिला द चाइल्ड आर्टिस्ट यू आर रिफरिंग टू इज अमित कुमार, बिल्कुल सही. द रियल लाइफ सन ऑफ लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार, ही प्लेड द रोल ऑफ रामू द म्यूट सन इन द 1964 क्लासिक दूर गगन की छाँव में. रसिला बहुत मेहरबानी, मंजुला गोरसिया मेहरबानी.

नूर जहां की आवाज आपने सुनी बीना पटेल बहुत शुक्रिया चंद्रिका वासंत गोसाई आपका भी आखिरी पैगामों के लिए समय दो गाने आपके लिए आगे नीलूफर का इंतजार कीजिएगा एंड हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड

0: her Sharma.
1: Hello and a very, very good evening to you once again. Welcome to the second half of the show, जहाँ पे the entertainment continues. हम पहले घंटे में बात कर रहे थे about if you want a weekend getaway, who would you take? Could be your family, could be your siblings, could be your friends, could be your partner. But imagine करो, whoever you are taking for a trip and you've asked them, के चलो, you know what, I have got the tickets and it's a fully paid for trip. Last minute पे, this person cancels. So, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रिप कैंसिल कर दोगे एंड इट्स नॉन रिफंडेबल, और यू विल गो अलोन. व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ट्रैवल अलोन और कैंसिल द होल थिंग एंड लेट दैट गेट अवे गो टू वेस्ट. शेयर योर थॉट्स विद मी ऑन 07011 6106.
2: East FM, Kenya's premier Asian mix.